0: 24 अफराद शिरकत करेंगे। इनमें टॉप डिवीजन के पहलवान और रेफरी शामिल होंगे। योकोजुना होशोरियू और ओनो सातो ने जुमेरात को पेरिस में सहाफ़ियों से बात की। मंगोलिया से ताल्लुक़ रखने वाले होशोरियू ने कहा कि वो फ्रांस में लोगों को सुमो की अजमत दिखाने के लिए जुनून की हद तक तैयारी करेंगे। वो मई के ग्रैंड टूर्नामेंट से उस वक्त दस्तबरदार हो गए थे जब पहले ही दिन उनकी दाईं टांग जख्मी हो गई थी। उन्होंने कहा कि रोज़ाना इलाज के प्रोग्राम की बदौलत चोट तकरीबन ठीक हो गई है। ओनो सातो बाएं कंधे की चोट की वजह से मई के टूर्नामेंट में शरीक ही नहीं हुए थे, ताहम उनका कहना था कि चोट काफ़ी बेहतर हो रही है। इस जापानी पहलवान ने मज़ीद कहा कि वो जुलाई में होने वाले टूर्नामेंट के लिए जापान में सख्त ट्रेनिंग करने से पहले पेरिस में अपनी हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं।
1: और सामेन, आखिर में ख़ास खबरों का खुलासा सुन लीजिए। जापान के मरकज़ी H3 रॉकेट ने 6 सैटेलाइट्स को कामयाबी से उनके तयशुदा मदार में डाल दिया है। H3 रॉकेट जुमे को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से कुछ देर पहले थानेगाशिमा खलाई मरकज से रवाना हुआ। जापानी वजीर आज़म ताकायची सनाए के अगले माह के अवाइल में भारतीय दौरे और भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत के इंतजाम किए जा रहे हैं। जापानी हुकूमत ने जुमे को हुक्मरान इत्तेहाद को एक गैर हतमी शेड्यूल से आगाह किया। इब्तदाई मंसूबे के मुताबिक ताकायची 1 जुलाई से 3 दिन के लिए शिमाल मशरकी रियासत आसाम के मरकजी शहर गुवाहाटी जाएंगी और अगले दिन मोदी के साथ सरबरा इजलास करेंगी। और सामेन, इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से ताज़ा तरीन खबरें ख़त्म हुईं।

0: どちらまで？
1: 猿の温泉までお願いします。
0: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
1: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
0: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
2: आज के सबक का कलीदी जुमला है बंदरों के गर्म चश्मे तक चलिए।
1: सारु नो ओनसेन मादे ओनेगाई शिमासु।
2: अगर आप इसे याद कर लें तो इसकी मदद से आप किसी टैक्सी ड्राइवर को अपनी मंजिल के बारे में बता सकते हैं।
3: सारु नो ओनसेन के मानी है बंदरों का गर्म चश्मा। इसमें सारु यानी बंदर और ओनसेन यानी गर्म चश्मा के दरमियान दो इस्मों को जोड़ने वाला हर्फ जार नो लगाया गया है। इस तरीके से पहला इस्म दूसरे इस्म की तशरीह करता है। मादे के मानी है तक और ओनेगाई शिमास किसी चीज की दरखास्त करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आज का नुक्ता। टैक्सी ड्राइवर को कहीं चलने का कहने के लिए मंजिल यानी उस जगह के नाम के बाद मादे और उसके बाद ओनेगाई शिमास लगाएं।
2: और अब वक्त हुआ है मश का, तो सामेइन सुनिए और दोहराइए।
4: ओनेगाई शिमास, सारु नो ओनसेन मादे ओनेगाई शिमास, सारु नो ओनसेन मादे ओनेगाई शिमास।
2: जी सामेईन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
3: अब एक टैक्सी ड्राइवर और मुसाफिर के दरमियान एक मुख्तसर मुकालमा सुनिए।
5: दोचिरा मादे देस्का?
6: कूको मादे ओनेगाई शिमास।
3: और अब इस मुकालमे की तशरी।
5: दोचिरा मादे देस्का?
2: कहाँ जाएंगे?
3: दोचिरा मादे में दोचिरा एक सवालिया लफ्ज है जो दोको यानी कहाँ की शाइस्ता शक्ल है।
2: मुसाफिर जवाब देता है,
6: कूको मादे ओनेगाई शिमास,
2: हवाई अड्डे तक चलिए।
3: कूको के मानी है हवाई अड्डा। कूको में कू और को दोनों हिस्सों का तलफ्फुज़ लंबा है।
2: तो सामेईन सुनिए और दोहराइए।
4: कूको, कूको मादे ओनेगाई शिमास।
3: चलिए अब एक और मकाम के नाम के साथ मश्क करते हैं। आप टोक्यो स्काई ट्री जाने के लिए टैक्सी में बैठते हैं, वहाँ जाने के लिए आप टैक्सी ड्राइवर से क्या कहेंगे? टोक्यो स्काई ट्री का जापानी तलफ्फुज है
4: टोक्यो स्काई ट्री, टोक्यो स्काई ट्री।
3: तो सामेईन कोशिश करें।
7: टोक्यो स्काई ट्री मादे ओनेगाई शिमास, टोक्यो स्काई ट्री मादे ओनेगाई शिमास।
2: बाद सूरतों में हम मंजिल का नाम लिखा हुआ कागज या नक्शा टैक्सी ड्राइवर को दिखाते हैं।
3: जी बिल्कुल। सामेईन फर्ज करें आप नक्शे पर एक जगह उंगली रखकर टैक्सी ड्राइवर को दिखाते हुए उससे कहना चाहते हैं कि इस होटल तक चलें, तो ये बात कैसे कहेंगे? वैसे इस होटल की जापानी है
4: कोनो होटेरु, कोनो होटेरु।
3: तो कोशिश करें।
5: कोनो होटेरु मादे ओनेगाई शिमासु, कोनो होटेरु मादे ओनेगाई शिमासु।
2: मुझे यकीन है कि अब आप किसी भी टैक्सी ड्राइवर को मतलूबा मकाम तक जाने का कह सकते हैं।
3: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मश्क का। ये आज के मकालमे के इंतहाई कारामद जुमले ओनेगाई शिमास की मश्क है।
2: दूसरे सबक में आपने सीखा था कि कोई शख्स जो मुतवक्का तौर पर आपका ख्याल रखेगा उससे इब्तदाई गुफ्तगू में यूँ कहा जाता है
4: योरोशिकु ओनेगाई शिमास।
3: ओनेगाई शिमास से पहले कोई इस्म लगाकर ये जुमला किसी भी किस्म की दरख्वास्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन होटल से चेकआउट के वक्त कहा जाएगा चेक आउट ओनेगाई शिमास। रेस्तोरान में कॉफी मंगवाने के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। कॉफी की जापानी है
4: कोही, कोही।
3: चुनांचे आप वेटर से यूं कहेंगे कोही ओनेगाई शिमास। रेस्तोरान में खाने पीने के बाद बिल की अदायगी के वक्त भी ये जुमला कारामद है। बिल को जापानी में कहते हैं
4: ओकाइके, ओकाइके।
3: तो बिल की अदायगी के वक्त अमले से कहा जाएगा ओकाइके ओनेगाई शिमास।
2: तो सामेईन सुनिए और दोहराइए।
4: चेक आउट ओनेगाई शिमास, कॉफी ओनेगाई शिमास, ओकाइके ओनेगाई शिमास।
3: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनिए। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें मियां टैक्सी ड्राइवर को अपनी मंजिल के बारे में बताती है।
0: どちらまで?
1: सारु नो ओनसेन मादे ओनेगाई।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 12 जून शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। जापान के प्रमुख H3 रॉकेट ने 6 उपग्रहों को निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। H3 रॉकेट ने स्थानीय समयानुसार शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे थानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। जापान अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी जाक्सा का कहना है कि रॉकेट सफलतापूर्वक उड़ा और प्रक्षेपण के करीब 15 मिनट बाद लगभग 580 किलोमीटर की ऊंचाई पर निर्धारित कक्षा में पहुंचा। बाद में रॉकेट ने 6 छोटे उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया, जिसके साथ ही ये मिशन सफल हो गया। दिसंबर में हुआ पिछला H3 प्रक्षेपण असफल रहा था। जाक्सा ने पेलोड सपोर्ट ढांचे को दुरुस्त कर लगभग 6 महीने बाद प्रक्षेपण प्रक्रिया बहाल की है। नवीनतम H3 मॉडल एक नया 3.0 कॉन्फ़िगरेशन प्रायोगिक यान है, जिसमें बूस्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसकी बजाय इसमें 3 मुख्य इंजन लगे हैं। पिछले मॉडलों में 2 इंजन हुआ करते थे। सबका ध्यान इस बात पर था कि जाक्सा अपने प्रमुख रॉकेट कार्यक्रम को पटरी पर लाने में सक्षम होगी या नहीं। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सानाए की अगले माह की शुरुआत में भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता की व्यवस्था की जा रही है। जापान सरकार ने शुक्रवार को सत्ताधारी गठबंधन को उनके यात्रा कार्यक्रम की सूचना दी। प्रारंभिक

योजना के अनुसार ताकाइची 1 जुलाई से गुवाहाटी की 3 दिवसीय यात्रा करेंगी और 2 जुलाई को मोदी से मुलाकात करेंगी। दोनों नेताओं की यह दूसरी प्रत्यक्ष बैठक होगी। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की एक दूसरे के देशों की नियमित पारस्परिक यात्राओं के जरिए ताकाइची द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना चाह रही हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह ईरान पर कड़ी कार्रवाई करने और उसकी तेल अवसंरचना जब्त करने की धमकी दी थी, लेकिन अब उनका कहना है कि उन्होंने हमले की योजना वापस ले ली है और ईरान के उच्च स्तरीय नेता समझौते की शर्तों पर राजी हो गए हैं। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को वॉशिंगटन में पत्रकारों से कहा, हमने ईरान के साथ संघर्ष विराम से जुड़ा बढ़िया समझौता कर लिया है और अब दस्तावेजों को अंतिम रूप देना बाकी है। अगले कुछ दिनों में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। समझौते पर संभवतः यूरोप में हस्ताक्षर होंगे। ट्रंप ने कहा, उनका मानना है कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने समझौते को मंजूरी दे दी है और समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिका अपनी समुद्री नाकाबंदी समाप्त कर देगा। हालांकि ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि ईरान ने अब तक किसी समझौते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। एजेंसी ने बताया कि ट्रंप पिछले 2 महीनों से बार बार दावा कर रहे हैं कि समझौता जल्द होने वाला है। फार्स न्यूज़ एजेंसी की खबर के अनुसार समझौते के प्रारूप को अब तक मंजूरी नहीं मिली है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: भारत का कहना है कि ओमान के निकट समुद्र में एक व्यावसायिक टैंकर पर हुए अमरीकी हमले में चालक दल के 3 भारतीय सदस्य मारे गए हैं। जहाज से 21 लोगों को बचा लिया गया है। अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर फुटेज पोस्ट करते हुए कहा कि वीडियो में जहाज के इंजन कक्ष पर सटीक गोलाबारी होते देखी जा सकती है। सेंटकॉम के अनुसार चालक दल ने अमरीकी बल के निर्देशों को बार बार नजरअंदाज किया, जिसके बाद बल ने ईरान से तेल ले जाने का प्रयास कर रहे इस टैंकर को निष्क्रिय कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि क्षेत्र में व्यावसायिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमले फौरन बंद होने चाहिए। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में निर्बाध आवागमन जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। जापानी चिप निर्माता कंपनी रैपिडस का कहना है कि सेमीकंडक्टर विकास में सहयोग के लिए उसे ब्रिटेन और इटली के सरकारी संस्थानों के साथ समझौते करने की उम्मीद है। रैपिडस के अध्यक्ष कोइके आत्सुयोशी ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री ताकाइची सनाई के साथ बैठक में ये घोषणा की। कोइके ने बताया कि ताकाइची की शनिवार से आरंभ यूरोप यात्रा के दौरान ये समझौता होगा। कोइके ने कहा, हम चाहते हैं कि एक नई दुनिया और प्रौद्योगिकी के निर्माण में मिलकर काम करने की दिशा में ये समझौता पहला कदम हो। ताकाइची ने कहा, वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टरों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। मैं रैपिडस चिप को न केवल ब्रिटेन और इटली बल्कि समान विचारधारा वाले अन्य देशों में भी बढ़ावा देना चाहती हूँ। पारंपरिक जापानी सुमो कुश्ती के 2 योकोजुना ग्रैंड चैंपियन खिलाड़ियों का कहना है कि वे आगामी पेरिस दौरे में लोगों को सुमो के आकर्षणों से परिचित कराना चाहते हैं। सुमो पहलवान 31 वर्षों में पहली बार फ्रांसीसी राजधानी का दौरा कर रहे हैं। सुमो प्रदर्शन के तौर पर शनिवार और रविवार को होने वाले टूर्नामेंट में शीर्ष रैंकिंग वाले पहलवानों और रेफरियों सहित लगभग 120 लोगों के भाग लेने की योजना है। योकोजुना पहलवान होशोरियू और ओनोसातो ने बृहस्पतिवार को पेरिस में पत्रकारों से बात की। मंगोलियाई खिलाड़ी होशोरियू ने कहा कि वे खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं ताकि फ्रांस में लोगों को दिखाया जा सके कि सुमो कितना महान खेल है। मई में हुए ग्रैंड टूर्नामेंट के पहले दिन दाहिने पैर में चोट लगने के कारण होशोरियू ने प्रतियोगिता से बाहर होने का फैसला किया था, लेकिन अब उनका कहना है कि नियमित उपचार के बाद वे लगभग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। वहीं बाएं कंधे में चोट के कारण ओनोसातो पूरे मई टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उनका कहना है

0: कि चोट काफी हद तक ठीक हो गई है। जापानी खिलाड़ी ओनो सातो ने इच्छा व्यक्त की कि जुलाई टूर्नामेंट के लिए जापान में कड़ी ट्रेनिंग शुरू करने से पहले वे पेरिस में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं।
1: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान के प्रमुख H3 रॉकेट ने 6 उपग्रहों को निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। H3 रॉकेट ने स्थानीय समयानुसार शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे थानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। जापान अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी जाक्सा का कहना है कि रॉकेट सफलतापूर्वक उड़ा और प्रक्षेपण के करीब 15 मिनट बाद लगभग 580 किलोमीटर की ऊंचाई पर निर्धारित कक्षा में पहुंचा। बाद में रॉकेट ने 6 छोटे उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया, जिसके साथ ही ये मिशन सफल हो गया। दिसंबर में हुआ पिछला H3 प्रक्षेपण असफल रहा था। जाक्सा ने पेलोड सपोर्ट ढांचे को दुरुस्त कर लगभग 6 महीने बाद प्रक्षेपण प्रक्रिया बहाल की है। नवीनतम H3 मॉडल एक नया 3.0 कॉन्फ़िगरेशन प्रायोगिक यान है, जिसमें बूस्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसकी बजाय इसमें 3 मुख्य इंजन लगे हैं। पिछले मॉडलों में 2 इंजन हुआ करते थे। सबका ध्यान इस बात पर था कि जाक्सा अपने प्रमुख रॉकेट कार्यक्रम को पटरी पर लाने में सक्षम होगी या नहीं।
2: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।